0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2121-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होण वाले प्रोग्रामां ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वानां दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

0: बनाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007 प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जां फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।

पर तन पर ती निंदा पर उपवाद न छूटे, आवागमन होत है फुन फुन ए प्रसंग। उप सोच दे पदर ते ही उस आवागमन दे विच, उस जन्म मरण दे गेर दे विच विचरिया होया है, शांत हो ही नहीं सकता। ते फिर तीसरा आकांक्षावां दी गल जिथों आपां कीती सी, तृष्णावां भुखिया भुख न उतरे जे बन्ना पुरिया, पर केवल तन दी नहीं विकारां दी भी, हर प्रकार दे गलत काम दी जिन्ना उस दे विच उलझेगा इतना ही उहदे विच घसया जाएगा, फस जाएगा, क्योंकि समा अपने कोल बहुत थोड़ा है। तो आपां इस नूं ते चौथी गल जिहड़ी गुरु साहिब सानूं दसदे आ, वो कहिंदे जे सोचिए कि चलाकियां दे नाल सियाणपां दे नाल वड्डे वड्डे फलसफे नूं ग्रहण करन दे नाल जे किसे दी दा छुटकारा हो जांदा, किसे दी तृष्णा बुझ जांदी या कोई अपने लक्ष्य नूं प्राप्त कर लैंदा उस अकाल पुरख, क्यों कि मेन मकसद की है, मेन गल है भई प्राप्त मानो ते हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी बरिया। गोविंद नु किवें मिलना है, अपने आप नु समझ के गोविंद नु मिलना, क्योंकि कहो कबीर हम राम की आस, पर जदों आपे नु आत्म जिणै सगल वस ता के, आत्म दा बोध जदों होएगा ते परात्म दा बोध भी होएगा। आत्म जिणै सगल वसता के जा का सतगुर पूरा। इसे करके इना तू नहीं बल्कि प्राकृति दे नियमां दे विच भाव लॉज ऑफ कॉस्मस हुक्म दे अंतर्गत विचरना, हुक्म दी रजा दे विच अकाल पुरख दी रजा दे विच राजी रहना, हुक्म रजाई चलना, ए ही इन्हां बंधना तो खलासी है। तृष्णा काम क्रोध लोभ मोह हंकार पंच वसाए पंच पुआए, जदों इन्हां पंजां नूं हिरदे च थां दे दिती तां सत संतोख दया धर्म धीरज इन्हां दा उत्थे निवास नहीं होणा। पर जदों उन्हां पंजां नूं पंच मनाए पंच रसाए, पंजां नूं हिरदे दे विच निवास दे दिता, अकाल पुरख दा निवास भी उत्थे हो गया, ते इस तरह की होएगा विकार चले जाणगे, मनुख सचियारा हो जाएगा। आओ अज दे विचार नूं इत्थे ही समाप्त करते हैं, फतेह दी सांझ करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुन सर्वन करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
2: सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी।

0: उजाड़ भी तू ही पैदा कीती है। सत्संगत रूपी मार्ग जेड़ा सच्चे मार्ग चलदिया उस्तत करे जहान, ए सुंदर मार्ग भी तुसी कीता होया है जे।
1: चला नाही को वे पाड़ा।
0: सो गरीब नवाज सच्चे पातशाह जी आप जी दे नाल फिर पड़ा विहार जेड़ा है वह किवें कोई चल सकदा नहीं, कोई आन करके आप जी दे नाल किस तरीके दे नाल सो हिसाब किताब नहीं चल सकता जे। एक मुसलमान भरावां दी कथा आउंदी है, परमेश्वर वाहिगुरु खुदा दी बंदगी करनी, कहना एक ने कहना कि हे खुदाया अदल करी, दूजे ने कहना फजल करी। सो जिस समय खुदा दे पास जा करके वार वार एहो ही बेनतियां कीतियां, सो एक नूं पुछिया कह लगे की पुछदा है, कहिंदे महाराज फजल करिया जे फजल। कहिंदे चंगा फिर तेनू मिस्त बख्शी, सोने दे घर बख्श दिते जा, आनंद कर। सो उहदे विच बैठ करके बंदगी करिया कर। दूसरे नूं कहिंदे तू दस, कहिंदे महाराज मेरा अदल करो। सो मैं आप जी दी बंदगी कीती है, सो बड़ी ज्यादा तप मुसक्कत घालना कीती। कहिंदे किथे बैठ के करदा रहा है, कहिंदे 12 वरे ओह पत्थर ते बैठा रहा, उहदे ते कासी पै गई, वेख लवो ओह पत्थर भी कस कस गया उत्तों। कहिंदे चंगा फिर हुण 12 वरे इह जे तू चाहुंदा है कि अदल ही होईए ते पत्थर भी जोनी आना, वह भी जून साडे अगे तरले मार रही, आ मनुख केड़ा बड़ा बनाया है, रोज ही साडे ते आण के बैठ जांदा है। चंगा हुण 12 वरे उहनू सिर ते चुक के खलो जा। इस करके गरीब नवाज तेरे नाल कोई बखीली झगड़ा चल नहीं सकदा।
1: एक बैसाए रखे गृह अंतर।
0: एकणा नूं ते वसा करके वेखो कहो जी उहदी खेड है, एक ते घर दे अंदर ही बिठाले होए हन।
1: एक पठाए देश दिसंतर।
0: एकणा नूं देशां विदेशां च कमाई फिरदा। आपां पढ़दे गुरबाणी सुखैण पातशाह, सो कई कोट बैठते ही खाए, कई कोट काले थक पा, कई बैठे ही घर के अंदर ही खाए जाते। इस तरीके दे नाल एक बसाए रखे गृह अंतर, एक ते बिठाए ने अपनी सत्संगत घर दे विच। सो एकना नू एक पठाए देश दसंतर, एक बार ही घूमते फिरते ने, कोई हन्ने दी कोई रन्ने दी, कोई पहाड़ा वाले धन्ने दी, कोई ढोल टमका सरवर दा, कोई किधर जपदा फिरदा, कोई किधर जपदा फिरदा। आप जी ने कलाउणा कीते हन, सो मनमुखां नूं भला करके उस मार्ग विच पा

दुख सुख देण दे ए सारे चोज करदा होया आप अकाल पुरख वाहिगुरु सुभाए मान हो रहा है। ये बख्श सतगुरु साहब जी ने अमृत हुक्मनामे द्वारा की है। कृपालू सतगुरु साहब जी की पावन अमृत कथा की विचार करदे आ, एक नहीं अनेक प्रकार दियां भुलां होईयां हन। सतगुरु गुरु की संगत बख्शन हार है, बख्श लैणा जी अगाह तो समत बख्शणे। देहो सज्जन असीसड़ियां जे होवे।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों गैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आना चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैनी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। ई प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशन तो हफ्ते दे सत्तों दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-268-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65 फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारा, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूं ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी, हमारे मुल्क में क्यों घुसाया, चाहता क्या है? बजरंगी आपकी और मेरी तरह एक आम इंसान है जिसका पाकिस्तान में घुसाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मोहब्बत। मोहब्बत एक 6 साल की बेजुबान पाकिस्तानी बच्ची के लिए जो अपने माँ बाप से बिछड़कर खो गई थी हिंदुस्तान में। बजरंगी पर जब सारे दरवाजे बंद हो गए तो इस बच्ची को उसके माँ बाप से मिलवाने के लिए उसके पास सिर्फ यही रास्ता बचा था।

कहानी को हर चैनल ने दिखाने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि ये कहानी बेकार है, बकवास है, इसमें किसी की कोई दिलचस्पी नहीं होगी। तो आप लोग ही बजरंगी भाईजान की मदद करें ताकि वो इस बच्ची को अपने घर पहुंचा दें और खुद सलामती के साथ लौट जाएं अपने वतन, अपने घर हिंदुस्तान।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 Trent Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे सत्तो दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामां नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6667 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैल

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11, 2316, 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो Bobby Dodd @403-561-9811 403-561-9811 साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैंड लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नू 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नू 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111 एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजार्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है, यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है यूनिट नंबर 2121 51 एकाठ 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेन ले तुसी पॉल सेखों जी नू 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरीज इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507, 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुन दे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गराज मटेरियल दे नाल नाल सीडर ते फेंस ते समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 जा फिर 403-717-3899 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, North East, Calgary।

कैलगरीज 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेने ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue South East Calgary near Stampede Ground।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विद 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा और भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिनाज स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्राम संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: और जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसडी हे इंजरी ला दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ढाडी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामा संबंधी या सहयोग ले किसी भी तरह की जानकारी लेन ले तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-4067।
1: होर जानकारी ले विजिट करो punjabiradio.ca।

प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हॉल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हॉल नू 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंकुएट हॉल दा पता है।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल, मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-581-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: श्री दरबार साहब अमृतसर तो गुरबाणी कीर्तन दे सरवण ले आज ही अपनी आकारा ते करां दे रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम ते ट्यून करो। श्री दरबार साहब अमृतसर तो प्रसारित गुरबाणी कीर्तन हर रोज सवेरे 4 तो 8 बजे तक ते शाम 5 तो 6 बजे तक रिले कीते जांदे ने। पंजाबी रेडियो 102.7 एफएम कैलगरी विच इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो है।
1: ज्यादा जानकारी लई कॉल कर सकते हो, फोन नंबर है 403-238-4 या विजिट करो www.punjabiradio.com।

0: गुर प्रसाद नानक मत पाई।
1: संत जना मिल हर जस गायो, कोट जन के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम वडाई, गुर प्रसाद नानक मत पाई।
0: श्लोक पवन गुरु पानी पिता माता धरत महत दिवस दाई दाया खेल सगल जगत।

ताको ताक पौड़ी आपी ने भोग भोग के होए पसमण और सिदाया बड़ा हुआ गुणीदार गल संगल कत चलाया।

0: दया कपा संतोष सूजत करी सतवट ऐ जने उजी कहां है ता पांडे काते ना टूटे ना मन लगे ना जले ना जाए तन समान स्नान कर जोगर चले पाए चौकड़ मुलने अबे चौके पाया सिखा कान चढ़ाया गुर ब्रह्म थिया हो मुआ चरपया वे तगा गया महला पला
1: लख चोरियां लख जारियां लख कुड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामिया रात नहजी नाल तग कपाहो कत्ती है बमण वटिया कहे बकरा रिण खाया सबको आखे पाए होए पुराना सुटिया पी फिर पाया हो नानक तग न टुटे जे तग होवे जोर महला पहला
0: नाय मन्ने पत उपजे साला ही सचू डर गए अंदर पाये तग न टूट सपूत महला पहला
1: तग न इंद्री तग न नारी भलके थुक पवे नित दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेहबा तग न वे तगा आपे बत्ता वड़ता गैवरा कत्ता लै पाड़ करे भी आहो कड़

0: भगत हार ली जय, हर भगत हार ली जय।
1: सलोक माला पहला गो ब्राह्मण को कर लावो गो बत्तर ना जाय। टिका ते जप माली तार मिले शाखा अंतर पूजा पड़े कतेबा संजम पुर का पाई। छोड़ी ले है पखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला।
0: मानस खाने करने वा छुरी वगाण तिन गल दाग तिन घर ब्राह्मण पुर है नाद ओ न पे आवे ओई सा। कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार। सर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहा भरपूर। मथै टिका तेड़ धोती कखाई हथ छुरी जगत का साई। नील वस्त्र पैर होवे परवान मलेश धान लै पूजे प्राण। अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके उपर किसे न जान। देखै चौका कड़ी कार उपर आए बैठे कूड़ियार। मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे। तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली पे। कहो नानक सच ते आई है सुच होवे ता सच पाई है। और चित्त अंदर सब को वे नदरी।

0: जे मोहता कर्म होए कर्म पितरी दे अगे वसियाणीए पितरी चोर करे वडिए हथ दलाल के मुसवीए करे नानक अगे सो मिले जे खटे खाली दे माला पहना
1: ज्यों जोर सिरणावणी आवे बारो वार झूठे झूठा मुख वसै नितरत पोए खुआर सोचे एह ना आखिए बहन जे पिंडा तोए सोचे से ही नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी।

0: श्लोक महला पहला जेकर सूतक मनिए सबे सूतक हो कोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने अन के जिया बाज ना कोए कह पानी जियो है जित हरे सब कोए सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवे रसोए नानक सूतक एव ना उतरे ज्ञान उतरे तोए महला पहला
1: मन का सूतक लोभ है देह बा सूतक कूड़ अखी सुतक वेखना पर त्रय पर धन रूप कन्नी सुतक कन पहला इत बारी खाय नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सबो सुतक भरम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाणे आवे जाए खाना पीना पवित्र है दितो रिजक संभाहे नानक जिनी गुरमुख बुझिया तिना सुतक नाहे ਔੜ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤ

आवे। चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचे आरे आयत। देग तेग फतहे विरद की पैज, पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बुलबाले बलो जी वाहे गुरु बलो जी। सिखा नू सिखी दान, केस दान रहत दान, भवेक दान विसाह दान प्रूसा दान। दाना सिर दान नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान। चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उची, मत पत दा रखाप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो। श्री ननकाणा साहिब आते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे, जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है। खुले दर्शन दीदार आते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नूं बख्शो हे निमाणिया दे मान, नेताणिया दे तान, ने उटिया दी ओ।

शुके मनः अदेशा सो प्रभुपाया कतः न जाया सदा सदा संग बैसा प्रभु जी पाणा सच्चा माणा प्रभु हर तन सहजे दीता कहो नानक तिस जन बलिहारी तेरा दान सबनी है लीता तौ पाणा ता त्रिपत अगाए राम मन थिया ठंडा सब तृष्ण बुझाए राम मन थिया ठंडा चूके डंजा पाया बहुत खजाना सिख सेवक सब पुंचन लागे हौ सतगुर कै कुर्बाना निरपौ भए खसम रंग राते जम के त्रास बुझाए नानक दास सदा संग सेवक तेरी भगत करो लिबलाए पूरी आसा जी मनसा मेरे राम मोह निर्गुण जियो सब गुण तेरे राम सब गुण तेरे ठाकुर मेरे कित मुख तुद सा लाही गुण अवगुण मेरा किशना बीचारिया बक्स लिया खिन माही नौ निद पाई वजीवादाई

लाथे जी सगल विसूरे। नाव निद पाई वजी वादाई, वाजे अनहद तूरे। कहो नानक मैं वार कर पाया, मेरे लाथे जी सगले विसूरे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राग बड़हंस महला पंजवा, छंत घर चौथा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरमिल लद्दा जी राम प्यारा राम, एहो तन मन दितड़ा,

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होर जानकारी लई पॉल सेखू जी नूं 403-829-5000 जां फिर 403-719-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316-27 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

बेड़े च उतरे ते कबीर दे मगर नसे आ रहे। कबीर जी अगे अगे ते सेठ मलाह पिछे पिछे दौड़े आ रहे ने ते आ के कबीर दे चरण पकड़ ले। कबीर साढ़े कोलो गुनाह होया है, माया दे हंकार विच तेनू किन्ना मंदा बोल बैठा, तेनू तके मार बैठा, सानू माफ करी। ते गुरु सवारियो जिहड़े सिमरन वाले हुंदे ने ना, ओ अपने मन दे विच किसे लई भी गुस्सा नहीं दे रखदे। कबीर ने आखिया, सेठ धन दा माण नहीं दे करीदा। ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी नानक सर वाले सोझी देंदे सन, गुरसिखा ऐ दुनिया दे सुख पक्के नहीं दे हुंदे, ये उन्ना चिर ही रहिंदे ने जिन्ना चिर तू प्रभु नाल जुड़िया रहेगा। सेठ ऐ सुख पक्के नहीं दे हुंदे, आ दुनिया विच तकिया है, लखां पति बंदे कई बार पलां दे विच कखां विच रुल जांदे ने, जिन्हां दे कोल सारे सुख ने आ दुनिया विच देखिया है, कई बार पल मात्र दे विच एक एक प्रसादे नूं थरस जांदे ने। एडा माण नहीं दे करीदा, चंगे होण दा हंकार नहीं दे करीदा, सुख आउंदिआं भी पता नहीं लगदा ते सुख जांदिआं भी पता नहीं जे लगदा। उस मालक कोलों डर के रहीदा है। सेठ दे हाथ जुड़ गए, मेरे कोलों गुनाह होया है। कबीर ने आखिया, तेरा नाम की है? इसने आखिया, मेरा नाम राम का दास है। कबीर जी मुस्कुराए, भलिया नाम किड्डा सोहना रखिया है, नाम किड्डा सोहना रखिया है ते कम किड्डे माड़े करदा है। नाम राम का दास रखिया है ते राम के दासां नूं तू तके मारदा है। कदी राम का दास बन के देख तेनूं किड्डा आनंद आएगा। हाथ जुड़ गए ते की कीता, अगों सेठ नूं लैण वास्ते रथ आया होया है, बाहर खलोता है। सेठ दे मन आई भी गुनाह बख्शा लवां। कबीर जी नूं लोई जी नूं रथ ते बिठाया ते आप मगर पैदल पैदल टुरिया जा रहा है, मगर टुरिया जा रहा है। हाथ जोड़ के सिर नीमा करके मगर मगर टुरिया जा रहा है। पहला कबीर दे घर पुजा, कबीर जी नूं घर छड्या, फिर अपने घर गया। ए मालक तू की नहीं कर सकदा, तेरे कोल बड़ियां पावरां ने, तू चाहे ते पत्थरां नूं पानी ते तार दे, तेरे लिए केड़ी वड्डी गल है। सानू औगण हारिया, सानू गुनाहां दे भरिया नूं तार दे।

साढ़े गुनाह की गिनती ना करी, असी बहुत बड़े गुनाहगार हाँ। जे गुनाह की गिनती करेगा तो असी कदे भी नहीं बख्शे जा सकते। सतगुरु सानू एक तरला करन दी जाच सिखा रहे हैं। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, तू बड़ा दयालु है, तू बड़ा कृपालु है, तू बहुत बख्शंद है। सतगुरु बख्शिश कर, सानू गुनाहां दे परियां नू तार दे, सानू औगणां दे परियां

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक

सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी

0: मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल, रूफिंग, इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 जां फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

कैलगरी दे इको एक धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो ते आओ हुण सरवण करिए गुरमत विचार भाई पिंदरपाल सिंह जी दी रसना तों।

0: तन सुका तिंजर थिया तलिया खुंडह काग अजे सो रब ना बहुड़ो देख बंदे के पाग कागा करन टंडोलिया सगला खाया मास ए दुए नैना मत शोहो तिर देखन की आस कागा चूंड ना पिंजरा बसे ता उडर जाहे जित पिंजरे मेरा सौ वसे मास ना तिदू खाहे। ए अमृत बचन बाबा फरीद साहब जी दे इना नू आधार बना के सेवा आपां कर सकिए। बाबा फरीद साहब जी दे अमृत बोल रबी विरहा दे अंदर कुठे हुए ओ शब्द जेड़े बैरागी हिरदिया नू बिन के चले जांदे। ए पवित्र शलोक बोधक तल तो उपजी हुई विद्वता तो नहीं जन्मे। ए पवित्र अमृत बोल बाबा फरीद साहब जी दी अपनी निजी तड़प है, उन्हां दा अपना निजी जीवन है और उन्हां दे अंदर दा बिरहा है। ते तिन्ना शलोकां विच एक ही प्रकरण है कि कान नूं मुखातब करदे पए ने, शरीर कमजोर हो गया, कान चुंझां मार मार के तलियां दा मास नोच रहा है, ते निर्बल होए शरीर वल देख के कहिंदे ने कि देखो तन दे अंग जवाब दे गए, शरीर नूं नोच के चूंड के मास कां पे खांदे ने, बंदे दी किस्मत के शरीर दी कमजोरी आ गई पर अज तीकरा इनू रब दे दीदार ना होए। दूजा बचन सिर्फ पहला अखरी अर्थ ने नाल शब्द कहो ने के कां तू पूरे दे पूरे तन नू नोच लिया पर आ दो जो नेत्र ने आ जो दो अखां ने इन्हां नू ना छू क्योंकि अंतले समय भी आस है कि उस प्यारे दी झलक उस प्यारे दे दीदार मैनू खोने। तीसरा बचन के हे कां के तू इस शरीर नू चूंड ना छड़ के चला जा ते जिस शरीर विच मेरा शौ वसदा मेरा प्रीतम वसदा जिन्नी जल्दी हो सके इस शरीर विचो तू उड़दा। एक बेनती है ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी पवित्र बाणी दे विच बिरहा हिरदे जेड़े ने उन्हां ने उस अवस्था विच भी अमृत बचन उचारण कीते क्योंकि परमात्मा नू मिलन दी तांग रखण वाले ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਂਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਬਿਰਹਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਲਨਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਔਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜਦੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਦਰ ਦਰ ਤੇ ਭਟਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਕਾਂਗ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਅੱਗ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੀ ਭਟਕਣਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਪਖੰਡ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਿਰਹਾ ਦੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਦਾਈ ਤੇ ਕਮਲਾ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਸਿਰ ਬਾਣੀ ਵਿਚੋਂ ਕੁਛ ਪ੍ਰਮਾਣ ਅਰਜ ਕਰਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਫ ਇੱਕ ਤਾਂਗ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਬਾਰਕ ਰਚਨਾ ਤੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਵੀ ਕਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਕਾਮ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਲੋਭ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੀ ਤੜਫ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਰਖਾ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਭੂਮੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਰਦੇ ਟਿਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਬਿਰਖਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹ ਤਨ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਕਿ ਬਿਰਹਾ ਬਿਰਹਾ ਆਖੀ ਹੈ ਬਿਰਖਾ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਫਰੀਦਾ ਜਿਤ ਤਨ ਬਿਰਖੋ ਨਾ ਉਪਜੈ ਸੋ ਤਨ ਜਾਨ ਮਸਾਨ। जिस तन विच बिरखा नहीं ओ तन मानो शमशान भूमि बन गया जिवे ओदे विच मुर्दे खून जिंदगी है नहीं मुर्दापन है। बाबा साहिब उन्हां दे अपने अंदर दी तड़फ है, उन्होंने अपनी जिंदगी का बहुत हिस्सा केवल अल्लाह रब दी इबादत ते कठोर साधना उन्होंने की है। उन्होंने मुखारबिन तो बचन ने कहने जे अंदर दी साधना बंदा कर लवे ते कई जन्मां दा विछड़िया होया एक खिन विच अज ही मिल सकदा है। किवें? जिस बंदे ने अपनिया अग लाउण वालिया इंद्रिया ते काबू पा लिया महाराज कहने ओदा अंदर अज ही शांत हो सकदा है। उन्हां दे बचन ने के आज मिलावा शेख फरीद किवें ताकिम जे रोक लवे ताकिम कुंजड़िया मनो मचंदड़िया जिन्हां ने बंदे दे अंदर अग मचाईए जे अग मचाण वालिया ते काबू पा जाए ते अज ही ओनू मिल सकदा है। बाबा साहिब जी ने कहा बिरखा सुल्तान है। इथे मैं थोड़ी जी अर्ज करनी है सुल्तान दे अर्थ की आखरी अर्थ तां सुल्तान दे ने बादशाह सम्राट के बिरहा बिरहा आखी है बिरखा तू सुल्तान क्योंकि साडे इस जिस्म दे अंदर अनेकां तरह दे जज्बे ने ओनू विषय भी कह लिए ओनू विकार भी कह लिए ते ओ जज्बे जेड़े ने वख वख समयां ते प्रगट हुंदे ने पर हर जज्बा जेड़ा शरीर दा है ओ कुछ खिन तो बाद निराशता नू जन्म देंदा है। काम भी तां इक जज्बा है क्रोध भी तां इक जज्बा है जिन्ने असीं विकार गुणने आ ए इक इक जज्बा है पर इन्हां सब तो श्रेष्ठ जेड़ा है ओ बिरखा है। बाकी सारे जज्बे जेड़े ने ओ बंदे दे अंदर नू भिखारी बनांदे ने। बिरखा दा जज्बा ऐसा है कि जेड़ा इस नू परमात्मा विच अपेद कर देंदा है। ओ जज्बा ओ सब दा शिखर है। भाई साहिब ने प्रमाण भी दिते कि बिरखी खिरदे जेड़े ने उन्हां दा जीवन ही ऐसा है कि उन्हां नू होर कोई चीज भौंदी भी नहीं प्यारे तो बिना। भावे मैं सिर्फ अखरी अर्थ कर रहा सच्चाई कह रहा ते असल विच एदे अर्थ भी ओ करे कि जिदे अंदर बिरखा दी कांग उठी हो। मेरी एक मजबूरी भी है दे अर्थ करने पर ओ खिरदा जिस विच बिरहा दी कांग उठ गई ओदे शरीर दियां कुछ निशानियां ओ निशानियां ने तकरीबन नौ। एक फारसी दे विद्वान ने लिखिया कि जिस अंदर भी ए बिरखा दी अवस्था पैदा हो जाए ओदे शरीर नू देखियो भावे अंदर दी सानू समझ नहीं पर ओदे शरीर दी हरकत दसेगी इस अंदर परमात्मा नू मिलन दी तड़प है। ओ नौ निशानियां ने ओ लिखदे ने कि आशकारा नौ निशानी ए पिसर के पुत्र परमात्मा नू रब नू अल्लाह नू ने करन वालियां दियां नौ निशानियां आहे सरदो रंग जरदो चश्म तर। पहलिया तीन आहे सरदो आ दा अर्थ होका लेना के जेड़ा परमात्मा नू प्यार कर दे ओ कई वारी बैठा बैठा सा लिंदिया सार ओनू ठंडा होका आ जांदा है। कहन लगे बिरखी दी पहली निशानी ए वे कि ओह ठंडे होके लेने शुरू कर दिंदा है। आहे सरदो दूजी निशानी है रंग जरदो ओदे शरीर दा रंग जेड़ा ज्यो ज्यो अंदर बिरहा उठदा त्यों त्यों ओदे शरीर दा रंग जेड़ा ओ पीला पैण लग पैंदा है। कई वारी बंदे पुछदे ने कि एदे तन नू होया की एदे रंग शरीर दा रंग फेस दा रंग क्यों पीला पैण लग पिया। महाराज कहिंदे दूजी निशानी ए वे कि बिरखी बंदे दा चेहरा पीला पै जांदा है। आखे सरदो रंग जरदो चश्म तर ओदियां अखां हमेशा भिजियां रहिंदियां ओदियां अखां च चंचलता ही नहीं अखां विच गंभीरता है चमक है पर प्यारियो जदों भी ओनू देखोगे ओदे प्यारे दी गल शुरू होवे ते अचन चेत ओदियां अखां दे विचों नीर दी धारा प्रवाहित हो जांदी है। ठंडे होके लैंदा रंग पीला पैण लग पैंदा है ते ओदियां अखां विच नीर प्रवाहित हो जांदा है। आहे सरदो रंग जरदो चश्म तर कम गुफ्त नूं चौधी ओदी निशानी है बहुत घट बोलदा है ओह बोलदा ही नहीं ते ज्यों ज्यों बिरहा अंदर होर उतेजना पैदा करता है सच्चाई ए वे ओह गल्लां करदा भी नहीं गल्लां भी उस मुख विचों निकलदियां ने जेड़ा मुख अजे भरिया नहीं जिस मुंह विच बुरकी रोटी पाई होवे वो मुंह गल नहीं कर सकदा, जिस अंदर बिरखा दी रब दी बख्शिश हो जाए वो अपनी जबान तो बोलना भी घट कर देंदा है। आए सरदो रंग जरदो चश्म तर कम गुफ्त नो कट बोलदा है, कम खुरद नो खुराक ओदी बिल्कुल थोड़ी हो गई, कम गुफ्त नो कम खुरद नो ख्वाबे हराम लोक आराम न सुते हुंदे ने, ओ राता नू ही तुरदा फिरदा चौंकड़े विच कदी बैठा कदी चलदा होया अपने प्यारे नू आवाजा मारदा हुंदा, ओनू रात नींद नहीं, ये छेवीं निशानी है। फिर मैं दोहरा दिया ठंडे होके चेहरे दा रंग पीला उस बंदे दे अंदर अखा दे विचो नीर घट बोलना घट खाना ते ओदी नींद भी बिल्कुल घट हो गई है। कम खुरद नो महाराज जी ने उस तो अगे जेड़े बचन कहे कहन लगे इंतजारी बेकरारी दस्ते सार, सतवां ओदा लक्षण हर खिन ओ इंतजार विच बैठा है के हुणे प्यारा आया। दूसरा ओ बेकरार हो जांदा है, एक थां ते ओ टिक नहीं रहा ते कई वारी नौवी निशानी एवे ते अपने सिर नूं अपने दोनों हत्थां विच पकड़ लैंदा है। ए उस दीआं नौ निशानियां ते जिस अंदर बिरखा पैदा हो जाए। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी विचों आओ दर्शन करिए कि जितनी बाणी है परमात्मा नूं प्रेम करन वाले प्रेमा भगती विच भिजियां हुआ रूहां दी बाणी है ते जिस जिस अवस्था नूं उन्हां माणिया उन्हां ने साडे ते कृपा कीती उस अवस्था नूं बाणी विच ओह दर्ज वी कर गए। धन गुरु नानक साहिब हजूर दे बिरहा नूं कदी असीं देखिए, मालक जी दा एक अमृत बचन है कि रैन बबीया बोलियो मेरी माई लोचन तार ललता बिललाती दर्शन प्यास रजाई, के अद्धी रात लंघ गई है सारे लोग आराम करदे ने पर एक पतिया ऐसा है कि रात गई ओ अजे भी प्रियो प्रियो पिया पिया दी रट लाई बैठा है ते जे के पुछया जाए भी सारे लोग आराम विच ने ते तेनू रात चैन नहीं, ठीक है आराम ओना लई जिन्ना दे अंदर खिच नहीं पैदा हुई प्यारे जिदे अंदर प्यारे नू मिलन दी तांग ओनू रात आराम किते। महाराज किन्ने अद्धी रात गई पपीया बोलदा है ते किन्ने मां इस पपीये दी ते मेरी होर है, रैन बबीया बोलियो मेरी माई लोचन तार एदियां अखां विच भी पानी है, ललता बिल लाती एदी जबान भी प्यारे नू मिलने दी विलकदी है, दर्शन प्यास रजाई अपने प्यारे बिन एक खिन रह ना सकू बिन मिले नींद ना पाई, जिवे एनू नींद नी आ रही। तन गुरु नानक साहब कहिंदे ने मां बिरगी खिरदे नू भी इस तरह नींद नहीं आउंदी। सिर्फ एक एक दो दो प्रमाण ने बाणी विच बेअंत ऐसे बचन ने जेडे एदे नाल संबंधित ने। जे कबीर साहब उन्हां दा बिरखा पढ़ के देखिए ओ भी इस अवस्था नू खंडा चुके ने ते इस गल कहिंदे ने कि बिरहा ता एक नाग है। बाबा फरीद ने कहा सुल्तान, कबीर साहब भगत जी ने कहा हां ओ ता एक सप है, किसे नू सप डंग मार जाए ते ओदा मंत्र नाल पुरातन समय लोग इलाज करदे सन कोई दवाई देनी ते ओदा जहर उतर जाना, कहन लगे आम सप डंग मारे ते लोकी दवाई नाल जहर उतार देंदे ने पर जिनू बिरखा दा सप डंग मार जाए ओदा जीना भी मुश्किल ते बिरखी बंदा जदों जींदा आम लोग ते बुद्धि दे तल ते जीण वाले नू शदाई कहन लग पैंदे। उहनां दा अमृत बचन है कि कबीर बिरहो भुयंगम मन बसै मंत ना मानै कोई, राम वियोगी ना जिये जिये तां बौरा होए, जिवें झला लोक ओनू कहिंदे। बाबे नामदेव जी नू पुछो उहनां ते भी इह बिरहा दी कांग आई ते उन्हां ने शब्द कह मैं बौरी मेरा राम पतार रच रच ताको करूं शिंगार, ओदी खातर मैं खा पाव कर रही है शिंगार कर रही हां, मैंने अंदर ता केवल अपने प्यारे नू मिलन दी तांग है। गुरु रामदास उन्हां दे बिरखा दी कांग है। असी सारे ओ शब्द पढ़ने हां कि कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा खौ तिस पै आप विचाई दर्शन हर देखन कहताई, किरपा करे ता सतगुरु मिले हर हर नाम त्याई। जे सुख दे ता तुझा अराधी दुख भी तुझा त्याई जे भुख दे ता इतकी राजा दुख विच सुख मनाई तन मन खाट कार सब अर्पी विच अग्नि आप जलाई पखा फेरी पानी ढोवा जो देवे सो खाई बस एक कृपा करी मालक नानक गरीब टह पया द्वारे कर मेल लेखो वड्याई। इस तो अगे पदा पढ़ो जो असल में बेनती करनी है। महाराज कहंदे ने कि ओ तड़व कैसी है चखड़ झांगी मीह वरसे पी गुर देखन जाई समुंद सागर होवे बोखारा गुर सिख लंग गुरु पै जाई जो प्राणी जल बिन है मरता त्यों सिख गुर बिन मर जाए। एक अंदर दी खिच है अंदर दी तड़व है जे धन गुरु अर्जुन साहब जी का बिरहा पढ़ो ए ता सारे सी शब्द पढ़ने हैं मेरा मन लोचा गुरदर्शन ताई बिलप कर है चातर की न्याही इथो तक के मालिक एक घड़ी ना मिलते ता कल जुग होता। सिर्फ एक बेनती है कि बिरहा एक ओ पीड़ा है बिरहा एक ओ परमात्मा दी दात है जिन्हें प्रेमा वाली भगती वाले पासे तुरना ओदे अंदर एक घटना जरूर घटदी है। जिवें सिर्फ इनू उदाहरण वजो है एक मां अपनी गोद विच संतान नू खिडाना चाहती है अपनी गोद विच बच्चे दा जा बच्ची दा प्यार ओ लुड़ाना चाहती है पर जिन्नी देर तक ओ प्रसूत दी पीड़ा नू जरेगी नहीं ते संतान नू जन्म नहीं दे सकती बच्चे नू जन्म देने लई ओदे लई पीड़ा अत लाजमी बन जाती है ते जिन्हें रब नू पाणा सचाई होवे ओदे लई भी बिरहा एक पीड़ा बन के आउंदी है जिवें प्रसूत दी पीड़ा तो बाद मां दीआं चीकां मां दा रोणा इक्को दम खुशी विच बदल जांदा है ते जदों बिरहा दी कांग विचों कोई लंघदा है ते प्यारे दा मिलाप जिहड़ा आनंद विच बदल जांदा है। सिर्फ एक पीड़ा है। बाबा फरीद साहिब ने असीं श्लोकां वल आईए कान मुखातब कीता क्योंकि आपां सारे सुनिया है ते फिर मैं अर्ज करनिया कि बिरहा एक ऐसी दात है परमात्मा दी अज तक पता नहीं सी कि मैं अपनी गल करना किन्ना कु रोए होवांगे औलाद लई रोए गरीबी लई बंदा रोया धन लई रोया संतान लई रोया जमीन लई रोया पदवियां लई रोया पता नहीं इन्हां अखां ने किन्ना कु पानी घेरिया है पर कदी परमात्मा लई रो के तां देखण दुनिया दे रोने दुख नूं जन्म देंदे ने ते जदों परमात्मा लई एक भी खंजू किसे दा डिग पवे ओ करोड़ा जन्मां दी मैल धो के रख जांदा ओ एक ऐसी अंदर दी बख्शिश है। एक मैं उदाहरण सिर्फ संखेप जी बिरहा दा संबंध केवल उम्र नाल लखी के कोई अत दा बजुर्ग हो गया जिवें बाबा जी ने शब्द वरते अजे सो रब ना बौड़ियो बिरहा ता इक दात है ते बचपन विच वी रब किसे ते तरस करके दे दे ते उनू मिल जांदी है। एक उदाहरण है गुरु इतिहास दी ओ इस करके भी मालक मेर करे कि ते साडे अंदर दी भावना प्रबल होवे। बाबा बकाला साहिब जी दे बिलकुल नजदीक एक नगर है बुताला उथे धन गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह जी दी चरण छू है ओ अस्थान पर उथे भी गए एक बिरहा विच भिजे हुए बच्चे दी आवाज नू सुन के ओदी पुकार नू सुन के ओदे बाप दा चलाना हो चुका है विधवा मां अपने बच्चे नू पाल दी सिर्फ संखेप जी कन रस ली नहीं के साखी दा भाव भी एक हुंदा है के पुरातन वापरियां हुईयां घटनावां किते अंदर नू टुंब जान ते ओ टुंबी होई साडे अंदर दी बिरती सानू किते नवी जिंदगी वाले पासे तोर दे। इहदा मतलब सिर्फ इना मां विधवा है बाप जा चुका है खूह ते बैठा है ते परमात्मा दे रंग विच रतियां हुईयां रूहां कुछ सज्जन लंघे ने एक ने अपने मोढे ते चादर रखी है दूसरे नाल उन्हां दे पिछे पिछे तुर रहे ने ते जिसने मोढे ते चादर रखी ओ अपनी जबान तो सतगुरु जी दी अमृत बाणी पै पढ़ दे बाकी सुनदे पै खूह दे कोल आ गए ते इत्थे रोक के बच्चे नू आवाज दे के कहन लगे बेटा प्यास लगी है पानी पिलाएगा ओ तेजी नाल पानी लैन गया ते जेड़ा बाणी पढ़न वाला गुरमुख है उन्हें बच्चे दे चेहरे नू देख के सिर्फ इन्नी गल की बेटा तेरे सतगुरु जी का नाम की है, तेरे मुर्शिद का नाम की है। ते पहला अक्सर जदो किते परमार्थ कमाण वाले एक दूजे नूं मिलदे सन ते पुछदे सन तेरा मुर्शिद तेरा गुरु कोई कौन है। अज सच्ची गल जे कम एक दूजे तो पुछया जांदा तेरा कम की है ते की करना, कदी किसे नूं किसे नूं पुछया कि सतगुरु दे नेड़ता किन्नी कु तेरे ते बख्शिश हो गई है। तावे तावे क्योंकि बिरती ओहो जी है। इको गल पुछी बेटा तेरा गुरु, उस न्याणे ने कहा कहन लगा बाबा ए शब्द कह मेनू कोई पता नहीं, माई मेरी जरूर ना लेंदी हुंदी, मेनू कोई पता नहीं। उस बुजुर्ग ने जाओ बाणी पढ़ने वाले गुरमुख ने कहा बेटा तेनू पता नहीं, देख तू श्वास लेना, तू परमात्मा दा दिता तन खंडा रहे, ये शरीर ता मिलिया ही गुरु भगती वास्ते है, तेनू अजे तक पता ही नहीं तेरी जिंदगी दे किन्ने दिन, तेरी उम्र लंघ गई किन्नी, ते नाले मौत दा की भरोसा की यकीन। गुरु तो बिना अगे किसे ने संभालना नहीं, गुरु तो बिना किसे ने सहारा नहीं देना। बस इन्नी को गल कह के चले गए, अंदर सी बिलकुल निर्मल। ते वैसे सतगुरु भी सबब बनांदे ने, जे बंदा हर वापर दी घटना नू पॉजिटिव सोचन लग पवे ना ते सच्चाई एवे जिंदगी बहुत उन्नति करे। पर करने की असि हर घटना नू नेगेटिव लैन लग पैंदे, कोई ठोकर वजे असी कहने परमात्मा ने सानू सजा दिती, कई तो इथो तक कह लग पैंदे पता नहीं सानू वैर कमांदा पे। ते आला मूल मंत्र भी सारी पढ़ी जाने निर्वैर है, वो किसी ना वैर सड़ा कमांदे। जो पॉजिटिव कोई लैंदा है वो कहिंदा नहीं परमात्मा कुमार भांडे नू उत्तों ठोकरा मारदा, देखण वाले कहिंदे ने तोड़दा पे है, पर पॉजिटिव सोच वाला कहिंदा नहीं उत्तों थापड़दा पे थल्यों सहारा देंदा पे। इहदी बाहर वाली ठोकर नू इस करके जाणियो कि चार दिनां नू बाजार विच इस भांडे दी कीमत पै जाए। सोच इना को अपने एक ठोकर वजी हो शब्द दा बाण वजा ते सच्ची मुची शब्द सहारना बड़ा मुश्किल जी। बाबा साहब ने बाणी च कहा डांगा बंदा सहार सकदा है, गोली सीने विच खा सकदा है, तीर नागनी बरशी तलवार सीने च खा सकदा है, पर बोल नहीं जे जरिया जांदा भावे ओ बोल कड़तन दा होवे ओनू ओ जर सकदा, जिहड़ा खिमा दा पुतला होवेगा आम बंदे तो जरिया नहीं जांदा। ते गुरु दा शब्द भी ओ जर सकदा जिहदे उत्ते मालक दी किरपा होवे। शब्द कोई भी है जरना बड़ा मुश्किल है। साहिब दा बचन भी है ना असी पढ़ने हां कि चोट सहेली सेल की मेजे दी बरशे दी नागनी दी, ओ चोट वजे आपां सहार लैने। चोट सहेली सेल की लागत ले उसास, चोट सहारे शब्द की तास गुरु मैं तास। कहन लगे भाई जिहड़ा शब्द दी चोट नू सहार लै, शब्द दी चोट नू सहारना है ते बाबे दे शब्द दी बंदा कमाई करे, उसदे तो बिना नहीं सहारिया जा सकदा। उन्हें शब्द की चोट वजी घर न्याणा गया निराश सी। मैं संखेप जी गल करा, उन्हें देखा माई ने भी बच्चा रोया लगता है, हो सकता है शरीके बरादरी विचों किसे कुछ क्या होवे। ते कहन लगी बेटा तेनू किसे ने कुछ क्या, तेरा चेहरा लथा है। कह लगा मां मेनू एक गल दस, अपना गुरु है अपना सतगुरु है। ते मां ने बड़े प्यार नाल कहा हां बेटा धन गुरु नानक साहब दा घर साडा घर है, गुरु नानक साहब दी जोत साडे गुरु ने। ते नाल ही कहन लगा मां उस गुरु तक मिलन दा कोई वसीला, उस गुरु तक पहुंचन दी कोई खेड। कह लगी इस वेले धन गुरु हरगोबिंद साहब उस जोत दे वारस ने मालिक ने। कहिंदा मां चल फिर दीदार। ते अगो उस मां दा उत्तर सी घर दी गरीबी है, रोटी एक वेले दी मुश्किल नाल पकदी है, पुत्र एक काम कर जे गुरु नू मिलना चाहना है ना तू प्यार नाल उना नू पुकारना शुरू कर दे, प्यार नाल पुकार। न्याणा सी गल समझ पै गई।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसी भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983, 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दिया सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसे भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300, 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डीजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंक्वेट हॉल का पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह के मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर की जानकारी लई पिछले 33 सालों तो कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसे भी तरह दी साइडिंग रूफिंग सॉफ्ट फेशिया जेम्स हार्डी ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर केटरिंग स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120-4150 109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

तू मेरा साहिब मैं तेरा चेला बन जांगा खालसा, पर शर्त है रहनी विच आ जा, रहत विच आ जा। जागत जोत जपे निस्वासर, एक बिना मन नैक न अन्न, पूर्ण प्रेम प्रती सजे व्रत गौर, मड़ी मठ भूल ना मन, माड़े जे दुखां करके मड़ियों ते मथा ना टेकन लग जाए कर, माड़े जे दुख करके कबरां वल ना भजे कर। खालसा तेरा अकीदा विश्वास गुरु गोविंद साहिब महाराज ते होना चाहिए, ताइयों रहरास विच पक्का शब्द शामिल कीता। तू अंदरों विश्वास नाल कह पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं अन्य। राम रहीम पुरान पुरान अनेक कहे, मत एक न मन्यो, सिमरत शास्त्र वे सबै वो भेद कहे, हम एक न जन। एक नुक्ता ध्यान नाल सुनियो, ऐदां दा गुरु ना किसे दा होया ना किसे दा हो सकता है। जिदां दा सानू दसम पिता गुरु गोविंद साहिब महाराज मिले, ऐदां दा गुरु दुनिया दे विच खोज के वेखियो, किसे नू ऐदां दा गुरु नहीं मिलिया। ये गल कल्ली आपां नहीं कहिंदे, एक मुसलमान कवि ने ये गल, जिहड़ा पंज वक्त दा पक्का निवाजी है, ईमान दा पक्का मुसलमान है, उन्हें दो किताबां इतिहास ते लिखियां ने गुरु गोविंद साहिब महाराज दे। एक किताब दा नाम उन्हें गंजे शहीदां रखिया है, एक किताब का नाम उन्हें शहीदा ने वफा लिख रखे है। उदे विच उन्हें एक गल कही, ओ दुनिया दे लोको, मैं खुद पंज वक्त दा नवाजी पक्का मुसलमान है, पर एक गल सच है, जिन्ना प्यार गुरु गोबिंद सिंह अपने सिखा नू करदे, इन्ना प्यार दुनिया का कोई पीर अपने मुरीद नू नहीं कर सकता। सब तो वध जे किसी ने सिखी वे सिख नू प्यार कीता है, वह मेरे गुरु गोविंद सिंह महाराज ने कीता है। वह लिख दे, हाशा किसी मुर्शद में ऐसा असयार नहीं है, किसी पीर में ऐसा जनहार नहीं है। पता क्यों? जेड़ा अमृत सिखा नू छकाया है, वह अमृत गुरु गोविंद सिंह महाराज ने आप भी छकाया। जेड़ी रहत सिखा नू दित्ती वह आप भी रखी, जेड़े ककार सिखा नू पहनाए ओ आप भी पहने, जेड़ी गल सिखा नू मनवाई ओ गुरु ने आप भी मनी है। नहीं तो गुरु कईयां दे होणगे निंदिया कोई नहीं, माफ करियो, चेले होर तरह दे ने, गुरु होर तरह दे। ओ गुरु ना चेले नू अपने वर्गा बनाउंदा, ना चेले नू अपनी जगह दिंदा, ते साथ संगत अपने आप नू बाहरी तौर ते गुरु अखवाई जान, पर ओ चेलिया नू इन्ना प्यार दे अपने बराबर नहीं कर सके। मेरे गुरु ने जिद्दां दा रूप सिखा नू दिता, आप भी ओही उतारन। कल्ली रहत तक इथों तक नहीं, रहत तक गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने रखी है। असने इतिहास विच इक सतर आउंदी है, जिथे श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जांदिआं जांदिआं सिखिआं दी प्रीख्या करदे, खालसा अखवाई जाने बन भी गया कि नहीं बनिया। अज पातशाह ने एक परख पाई, श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जांदिआं जांदिआं पीर दादू की समाध नूं तीर नाल मत्था टेकिआ, बस पीर नाल सिर झुकाउण दी देर सी, खालसिआं च चर्चा चल पई, महाराज सानू कहिंदे ओ गौर मड़ी मठ भूल ना मन, आप तुसीं इक गौर नूं कबर नूं सजदा क्यों कीता, जे रहत साडे वाली अमृत साडे वाला सब कुछ साडे वाला है, पातशाह तुहाडे ते वी लागू हुंदा है। बलिहार गुरु गोविंद साहिब महाराज तो वह तो जान के पातशाह ने परख पाई, हजूर ने अपने तन तो गतरे समेत 3 फुट की कृपान लाई, ते श्री साहब कृपान ला के पंथ नू पेश करके कहा, दया सिंह गुरु गोबिंद सिंह भी तनखाइया होया, मैनू तनखा ला। किसी सिख की की हिम्मत सी तनखा ला दे, अखां भर गई, हाथ जुड़ गया, नहीं पातशाह असी तो उंज पुछे। सतगुरां कहा, नहीं दया सिंह मैं भी तनखाइया होया, मैनू तनखा लाओ। पातशाह ने कृपान श्री साहब उतार के गत्रे समेत पंथ नू देती, 5 सिख बह गए तनखा लाउण। जदों पंजां ने आपस विच विचार करके तनखा लाई, 10वें पातशाह नू तनखा लाई, 25 रजत पण कड़ा प्रसादी देग भेंट करो पंथ नू। कलगी धर पातशाह ने 25 रजत पण कड़ा प्रसादी देग पंथ अगे भेंट की, अरदास होई, फिर पंजां ने वापस श्री साहब जदों देना सी उदों उह तनखा लाउण लगे, कहा सुनावे कौन गुरु नू। पंजां प्यारियां विचों प्यारे दया सिंह नू कहा, तुसीं सुनाओ। उन्हां कहा, नहीं मेरी जबान तो तनखा नहीं सुनाई जाती। पता क्यों? मैं अखां नालों सब कुछ वेख्या, जिन्ना प्यार खालसे नूं गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कीता, इन्ना प्यार दुनिया का कोई गुरु नहीं कर सकिया। मैं हाथ जोड़ जोड़ कहिंदा रहा, 10वें पातशाह तेरे पुत्तां दीआं लाशां बिना कफन तो पईआं ने, मैं दमाला खोल के दिना पुत्रां दा मूंह ढक जाओ। 10वें पातशाह ने अपने पुत्तां दा मूंह नहीं ढकिया कपड़ा पाके,
इन्नी गल कही दया सिंह मैं अपने पुत्तां तो प्यारे सिख छड़ के पुत्तरां ते कपड़ा किवें पादा मैनू पुत्तां तो प्यारे सिख ने मैं एहो जे गुरु नूं अज तनखा किवें ला दां मैं नहीं तनखा ला सकता मैं हाथ जोड़ जोड़ कहिंदा रहा गुरु गोबिंद सिंह महाराज तू दुनिया का पहला प्यो है जेड़ा पुत्तां दीआं लाशां बिना कफना तो छड़ के जा रहा इस धरती ते गरीब तो गरीब बंदे होए ने अज तक किसी प्यो दे पुत्त दी लाश बिना कफन तो नहीं गई कोई गरीब भी होवे तां वी उत्ते कफन पैंदा है तू तां शहनशाहां दा शहनशाह दुनिया की कह दी तेरे पुत्तां नूं कफन भी नसीब नहीं होया उस वक्त गुरु गोबिंद सिंह महाराज बिना कफन पाया तुर लगे प्यारे दया सिंह ने जिहड़ी गल कही सी ना ओ वाकई अंदरों हिला सकदी सी किसे दसम पातशाह नूं अंदरों हिलाउण लई इन्ना अंदरों विराग भर के गया बादशाह गरीब तो गरीब प्यो दी औलाद भी बिना कफन तो नहीं जांदी तू शहनशाहां दा शहनशाह तेरे पुत्तां ते कफन क्यों नहीं जिहड़ी गल दया सिंह ने कही ओनूं चरण सिंह सफरी साहब ने लिखे प्यार विच भिज के सफरी साहब लिख दे कहिंदे दया सिंह ने दिल भर के अंदरों कहा गरीब तो गरीब मापे हे गुरु गोबिंद सिंह महाराज इत्थे गरीब तो गरीब बंदे पए ने दुनिया गरीब

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सरब लो दे पांडे, फुलकारियां अते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: 403-899-1999 1985 या फिर 403-899-1984 से संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज का पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लेने लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तों तुसीं फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। कैलगरी च 24 घंटे 7 दिन चलन वाले इको एक धार्मिक पंजाबी रेडियो 102.7 FM तो हुण सरवण करो जी आद गुरु जुगो जुग अटल सत गुरु तन तन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा सच खंड श्री हरमंदर साहब श्री अमृतसर साहब जी विखे होया अज अमृत वेले दा मुख वाक ते व्याख्या। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

0: गुरमत कृष्ण गोवर्धन तारे, गुरमत सायर पाहन तारे। तो इस करके गोवर्धन पर्वत नु धारण करके गोवर्धन धारी नाम पिया है।
1: मुरली मनोहर हर रंगा,
0: द्वापर युग दे विच फिर मुरली वजाई है मनोहर बड़ी सुंदर, ते नाम पिया है मुरली मनोहर। बंसरी वजाउण वाला नाम पिया है
1: मोहन माधव कृष्ण मुरारी।
0: इसे प्रकार मुरली मनोहर हर रंगा, ते हरेक रंग विच विचर रहा है। मोहन मन नू मोह लैण वाले हो, ते अपने संतां भगतां दे मोह नू हन नाश करन वाले हो। माधव माया दे पति हो, कृष्ण सो काले रंग वाले होण करके कृष्ण नाम पिया है, सांवला रंग है। ते मुरारे मोरादिक दैंत नू मारन करके

0: लक्ष्मी दे कंत पति रूप हो करके आप कंतूहल कौत कर दे हो।
1: आनंद विनोदी नेह संगा
0: आनंद दायक विनोदी कौतक वाले हो और नेह संगा सो आप निर्लेप हो किसी दे नाल नहीं हो किते मारे कहिंदे तू सारियां दे नाल है ते किते सतगुरु कहिंदे तू वखरा है। सर्ब निवासी सदा अलेपा ऐसा आप जी का स्वरूप है।
1: अमोघ दर्शन आजूनी संभव
0: आप जी का दर्शन सफला है आप जूनिया तो रहत और संभव।

0: पूर्त है, हस्ती है, वो समय तो रहत है, काल तो रहत, मौत तो रहत, कलंका तो रहत, अज्ञान तो रहत है, अकाल मूर्त जिस कदे ना ही खाओ, जिस आप जी नू कदे भी खाओ कोई खौफ नहीं है, ते जिस आप जी दा कदे भी खाओ नाश नहीं हुंदा है, खै नहीं हुंदे हो।
1: अविनाशी अभगत अगोचर,
0: तो रह तो आप जी दी प्राप्ति कठिन है और इंद्रियां दी पकड़ तो परे हो।
1: सब किश तुझ ही है लगा,
0: सारा कुछ आप जी दे विच ही लगा होया है, सारी संसार सृष्टि आप जी दे विच ही लीन है।
1: श्री रंग बैकुंठ के वासी,
0: लक्ष्मी नूं भी रंग आनंद देण वाले हो ते बैकुंठ दे आप वासी हो, सत संगत रूपी बैकुंठ विच वसदे हो।
1: माशा काश कोरमा आग्या आओ त्रासी,
0: आप जी दी आग्या दे विच ही सो माश और काश अवतार सो औतरासी विशेष करके उतरे हन, आप जी दी आग्या विच ही अवतारे होए आ। माश काश हो ब्राह जमना कै कूल खेल खेलियो जिन गिंद जीओ, ते इसे प्रकार कूरम सो आप जी दी सेजा दे थले जेड़ा कशुकुमा है और बाशक नाग ए भी आगे आप जी दी आग्या दे विच उतरे होए हन।
1: केशव चलत करह निराले,
0: केशव आप जी नूं तां कहिंदे तुसीं सोहणे केसां वाले हो, लम्मे लम्मे केस आप जी दे, तां सानू भी मारे ने आख्या कि तुसीं भी भाई साबत सूरत हो, केसा धारी होवो। केशव परमेश्वर वाहिगुरु केसा धारी, चलत कर है निराले, बड़े निराले कौत करदा है।
1: कीता लोड़ है सो होएगा,
0: हे प्रभु जो तुसी कीता लोड़दे हो ना, करना चाहुंदे हो, ओहो ही कुछ होएगा। पिछे जो चाहुंदे सी हुंदा सी, हुण ओहो हो रिहा, अगे भी ओ कुछ होवेगा जो तुसी करना है।
1: निराहारी निरवैर समाया,
0: आहार तो रहत हो, वैर तो रहत हो, सारे समाये होए हो।
1: तार खेल चतर पुज कहाया,
0: आप जी ने संसार दी खेल धारण करके पैदा करके ते चतर भुजी रूप भी आप ही कहाउणा कीता है।
1: सावल सुंदर रूप बनावे है,
0: तुसी सावला ते बड़ा सोहना रूप बना लैंदे हो।
1: बेण सुनत सब मोह हैगा,
0: किते बंसरी वजाउंदे हो ते आप जी दी बंसरी सुन के सारे मोहित हो जांदे हन।
1: वन माला विभूखन कमल नैन,
0: किते बजंती माला आप जी ने धारण कीती होई है, जंगल दे फुलां दी माला धारण कीती होई है, विभूखण गहने ते कमल फुल वर्गे आप जी दे नेत्र हन।
1: सुंदर कुंडल मुकट बैन,
0: सोहणे कुंडला वाले ते मुकट ते सोहणे बचन हन आप जी दे।
1: शंख चक्र गदा है धारी,
0: आप जी किसे मौके ते शंख भी धारण कर लैंदे हो अपने हथ विच, सुदर्शन चक्र भी ते गदा भी धारण कर लैंदे हो।
1: महासारथी सत संगा,
0: रथ चलाउण वाले महान सारथी भी बन जांदे हो, आप जी दा ऐसा श्रेष्ठ स्वरूप है और सत संगत विच वसदे हो।
1: पीत पीतंबर त्रिभवन धनी,
0: पीले वस्त्र पहनण विच भी आप जी प्रीति कर लैंदे हो, ते तिन्ना भवणा दे तिन्ना

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लेने लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस यूनिट नंबर 124 4774 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते यानी 403-605-6300 ते।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो तां इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130-4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347। रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near Stanford.

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2323 32nd Avenue Northeast Calgary। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राईवॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th Street Northeast Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नूं कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 3065818061 पर संपर्क करें।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट ट्रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue, South East Calgary, near

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन बार्स वॉशरूम वैनिटी क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकते हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो रेडियो धार्मिक वॉल हैंगिंग्स शस्त्र ककार म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल हारमोनियम तबला तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयरडील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयरडील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तों लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।

0: बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 28 पुजा होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिश या स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2332 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्ना लोकेशन्स तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नू 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

लोक सुतवंता कोई न किसकी धरिया सिर सिर रिजक संभाहे ठाकुर काहे मन भाव करिया उडे उड़ावै सह कोसा तिस पाछै बचरे छरिया तिन कवन खलावै कवन चुगावै

जिसन तू जाना है सोई जन जाना, हर गुण साधी आख बखाना। जिन हर सेवे आ तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया।

सवैया पाएंगे हे जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ। राम रही पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने ओ। सिमत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जाने ओ।

बोलो जी वाहेगुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम।

अब हम चले ठाकुर पहहार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पावे मार। लोकन की चतुराई उपमा ते बैसंतर जार, कोई भला कहो भावे बुरा कहो, अमतन दियो है ढार। जो आवत शरण ठाकुर प्रभु तुमरी, तिस राखो कृपा धार।

0: कैलगरी 24 घंटे सत्तो दिन प्रसारित होने वाले इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 एफएम ते हर हफ्ते सोमवार तो शुक्रवार शाम 6 बजे तो 8 बजे तक तुसी सुनदे हो गुरबाणी विचार प्रोग्राम पंजाबी रेडियो कैलगरी दे होस्ट प्रोफेसर मनजीत सिंह प्यासा द्वारा।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब गतका अते दुमाला शस्त्र ककार हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स दस्तारां छोटी बच्चियां दे सूट सर्ब लो दे पांडे फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
3: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
0: पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते प्रसारित होने वाले प्रोग्रामा ते जो भी विचार पेश कीते जांदे ने ओ उना विद्वाना दे अपने विचार ने। रेडियो अदारा 102.7 FM इना दे नाल सहमत होवे ए लाजमी नहीं।